0: पढ़ती हूँ, अभी करना है, अभी पढ़ती हूँ। Survive most of this has been transported to Russia.
1: Well.